न सिर्फ किसी बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर उसका इलाज किया जा सकता है, बल्कि ये किसी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को भी बताने में भी काफी मदद करती है। हेल्थ चेकअप के द्वारा डॉक्टर को मरीज का इलाज करने में अच्छी समझ मिलती है, साथ ही उसे डॉक्टर मरीज की बॉडी और उसके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छी तरह से समझ पाता है। इसके आधार पर डॉक्टर मरीज को दवाइयाँ और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह देता है। लोग क्यों नहीं कराते रेगुलर हेल्थ चेकअप? अगर आम आदमी की बात करें तो वो अपने बजट को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। आम आदमी के रेगुलर हेल्थ चेकअप न कराने के पीछे उसका बजट एक कारण है। कई बार लोग हेल्थ चेकअप के फायदे के बारे में जागरूक तो होते हैं, लेकिन वो इसलिए इसे रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके हेल्थ प्लान में शामिल नहीं होता है। दरअसल अधिकतर हेल्थ प्लान पैथोलॉजी टेस्ट जैसे ही ब्लड और यूरिन टेस्ट, हार्ट इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड, किडनी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट को शामिल नहीं करता है। ऐसे में लोग अलग से इन्हें कराने से कतराते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। तो दोस्तों, अब सुनिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने के फायदे। अपने बीमार होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियों और जानलेवा बीमारियों का जल्दी पता लग जाता है। बीमारी का पता लगने पर इलाज और उपचार में मदद मिलती है। मौजूदा स्थितियों की बारीकी से निगरानी करके जटिलताओं के जोखिम को सीमित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलती है। महंगी चिकित्सा सेवाओं से बचकर स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम किया जा सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप से डॉक्टर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, जो इलाज को आसान बनाती है। नई चिकित्सा और तकनीक की जानकारी मिलती है। तो इतने फायदे हैं दोस्तों, और बहुत कुछ भी सीखने को मिलता है दोस्तों अपने हेल्थ के बारे में। तो ध्यान से सुनिए लम्हे प्रोग्राम चेतन से।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। एक महिला को परिवार की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है और घर के हर सदस्य की देखभाल, हर चीज और हर किसी की देखभाल करती है। एक महिला घर की हर जरूरत और अनुरोध को पूरा करने के लिए दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करती है। कई बार इस वजह से महिलाएं अपने सेहत को भी नजरअंदाज कर देती है, इसलिए एक महिला को विशेष देखभाल और समय पर कुछ स्वास्थ्य परीक्षण और जांच कराने की आवश्यकता होती है, वे अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रह सके और सेहतमंद रहे। रूटीन ब्लड टेस्ट संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है। ये टेस्ट एक महिला के समग्र शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। नियमित अंतराल पर परीक्षण करवाने से महिलाएं देख सकती है कि समय के साथ उनका शरीर किस तरह से बदलता है और उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचना निर्णय लेने के लिए जागरूक होना है। रूटीन ब्लड टेस्ट में आमतौर पर ब्लड प्रेशर टेस्ट, एनीमिया परीक्षण, ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, विटामिन डी सहित अन्य टेस्ट शामिल है। एक महिला साल में 2 बार इन रक्त परीक्षण को करना चाहिए। मैमोग्राम मूल रूप से महिलाओं के स्तन

स्तनों का एक्सरे होता है। मैमोग्राम स्तनों कैंसर के लक्षण को पता लगाने में मदद करता है। ये महिलाओं में कैंसर से संबंधित मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक महिला को आमतौर पर 40 साल की उम्र के आसपास अपना मैमोग्राम करवाना शुरू कर देना चाहिए और फिर हर 1 या 2 साल के बाद इसे दोहराना चाहिए। कुछ डॉक्टर आपको 50 साल की उम्र तक मैमोग्राम करने की सलाह दे सकते हैं। ये परीक्षण एक महिला के स्तनों में होने वाले सौहार्दपूर्ण परिवर्तन जैसे गांठ, असामान्य त्वचा और अन्य की पहचान करने के लिए किया जाता है। गर्भवती महिला को ये परीक्षण नहीं कराना चाहिए। कैंसर संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की जांच के लिए पेल्विक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। 21 साल की उम्र के आसपास में एक बार पेल्विक टेस्ट करवाना चाहिए। एक बोन डेंसिटी टेस्ट एक महिला के शरीर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कूल्हे, एड़ी और कलाई में हड्डी के द्रव्यमान को मापती है। BMD ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें उनकी हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाती है और टूटने के लिए अति संवेदनाशील हो जाती है। विभिन्न मशीनों का उपयोग करके बोन डेंसिटी टेस्ट किया जा सकता है। इस सभी स्क्रीनिंग टेस्ट को हर महिला को समय समय पर जरूर करवाना चाहिए, जिससे सेहत की उचित देखभाल के साथ चिकित्सकीय परामर्श लिया जा सके और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने RJ चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: अपने समय के साथी कमेंटेटर्स को याद कीजिए और उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाइए सर।
1: हाँ नहीं देखिए, पहली बार जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे ना, तो कई ऐसे कमेंटेटर होते थे जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं था।
0: हाँ।
1: अब आकाशवाणी पे ये समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि आवाज देखें, भाषा देखें, क्रिकेट का ज्ञान देखें। तो शुरू में कई लोग जिनको केवल भाषा और आवाज थी लेकिन क्रिकेट का ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी चुना। तो एक मैच का मुझे याद है, वो 1969 मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं भी नया नया था और मेरे साथ वाले जो सज्जन थे वो भी नए थे। तो वो एक नक्शा लेकर आए थे।
0: हाँ हाँ।
1: कि वो देख रहे थे कि तीन स्लिप, एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर ऐसा। तो अब उनको ये पता नहीं था कि अगला ओवर जो होगा वो दूसरी तरफ से होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो वो नक्शा तो उन्होंने बदला नहीं। तो लाला अमरनाथ हमारे एक्सपर्ट थे।
0: जी जी।
1: तो जब ओवर कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ से बॉलिंग होने लगी तो उन्होंने कहा, लाला जी ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है। तो लाला अमरनाथ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ये इसको नक्शा वापस सीधा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया, अब बोलिए। तो ये कई इस तरह की घटनाएं भी होती थी।

0: जी
1: लेकिन कोई बात नहीं, वो सीख के दिन थे, शुरुआती दिन थे। तो कई कमेंटेटर सीख रहे थे और आकाशवाणी ने भी समझा कि क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आवाज तो होनी ही चाहिए, भाषा होनी चाहिए, क्रिकेट का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी एक चीज में कमी हो तो बात अधूरी रह जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में जब आपने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की, तो मैंने एक चीज हमेशा जानी है कि पैसे कम मिलते थे और अपनी जेब के खर्च डाल के आप यात्राओं पर जाते रहे,
1: नहीं,
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: जुनून कायम रखा।
1: बिल्कुल। पहली कमेंट्री मैंने 15 रुपए दिन में की थी रणजी ट्रॉफी की।
0: ओहो
1: और जब 1979 में मैं इंग्लैंड गया तो 100 रुपए प्रतिदिन,
0: हाँ
1: और पाकिस्तान गया तो शायद 100 रुपए प्रतिदिन। पाकिस्तान 1978 और 82 दोनों बार पाकिस्तान गया मैं, और वो यात्रा भी अभूतपूर्व रही। मतलब पाकिस्तान का तो एक मैं कई बार किस्सा बताता भी हूँ
0: जी।
1: कि 1982 की बात है, और हमारे जो मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जो उनका काफी वहां पर रुतबा था, सब लोग जानते थे उनको वहां और पाकिस्तान में। और अब हमारी टीम ने एक पार्टी दी थी पाकिस्तान में, और फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े हुए बाहर सबको रिसीव कर रहे थे, मैं भी था और सुनील गावस्कर साहब भी थे। और अचानक आवाज उठी कि वो आ गई, वो आ गई। सबने कहा भाई कौन आ गई, मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटा यंग था बिल्कुल आपकी
0: जी
1: तरह। तो मैंने कहा भाई कौन आ गई, कौन स्टार आ गई। तब देखा एक मिडिल एजेड वुमन वहां पर आई, और गायकवाड़ साहब ने परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं और दुनिया इनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, आप तो इनको जानते ही होंगी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जहीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ।
0: ओ
1: तो गावस्कर साहब को पूछा कि भाई कोई बात नहीं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां हैं।
0: ओ
1: तो गावस्कर साहब तो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन स्वाभिमान के मामले में बड़े हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूं।
0: अरे बाप रे।
1: तो ये मैं कभी भूलता नहीं कि
0: मौके पे
1: देखिए
0: चौका।
1: विरोधी मौके पे चौका, आप सही कह रहे हैं। तो आप विदेशी भूमि पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो और वहां पर स्वाभिमान की बात, तो गावस्कर साहब के चरित्र में आज भी यही बात देखने को मिलती है कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में हिचकते नहीं है।
0: क्या बात है। यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं। ऐसा ही

0: से एक मशहूर, तो ये जानते हैं कि पब्लिक की आवाज के ऊपर से आपकी आवाज जानी चाहिए, आपकी आवाज खोनी नहीं चाहिए
1: जी।
0: तो पब्लिक की आवाज के हिसाब से ही आपकी आवाज उतार चढ़ाव होते हैं और पता लग जाता है अनुभव से कि पब्लिक आवाज कैसी आ रही है, सुनाई भी देता है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि ये संतुलन कि आप सब चीजों के पार जाकर अपने आप को संतुलित करें और एक संतुलित प्रदर्शन करें, जैसे खिलाड़ी करता है ना मुसीबत में, वैसे ही आपकी कमेंट्री का भी ये एक तेजाबी परीक्षण है
1: क्या
0: कि आप कैसी कमेंट्री कर रहे हैं। आप बहुत चिल्ला तो नहीं रहे, क्योंकि चिल्लाना भी नहीं चाहिए, आपकी आवाज फट तो नहीं रही, कई आवाज फट जाती है क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो रोमांच है वो इतना बढ़ जाता है कि आप सनसनीखेज आवाज पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आपको संतुलित ढंग से और उसी हिसाब से जितना रोमांच है बस उतना ही परोसे, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। एक अच्छे कमेंटेटर की पहचान ऐसे ही क्षणों में होती है।
1: बिल्कुल सही है सुशील जी। यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: बहुत संकोच से ये कहना पड़ रहा है और पूछना पड़ रहा है कि मैं आपसे एक कमेंट्री सुनना चाहता हूँ, इमेजिनरी कमेंट्री। देखिए, हमारे सुनने वालों में बहुत अलग अलग तरह के उम्र के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने पूरा रेडियो कमेंट्री का दौर देखा है और फिर टेलीविजन आते और फिर रेडियो कमेंट्री को थोड़ा कम होते देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो कमेंट्री का सबसे सुनहरा दौर देखा है और ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुनते रहे हैं, जिसमें लोग पूछते थे भाई साहब स्कोर क्या है, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जनरेशन के बाद के हैं, जिन्होंने ये नहीं सुना है। उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक झलक हम सुन पाए तो अच्छा होगा।
1: नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान पिच पर पहुंच चुके हैं। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, 50,000 दर्शकों की मौजूदगी है और मैं जहां भी जा रहा हूं ना, आज होटल की रिसेप्शनिस्ट से लगाकर जो रिक्शा चालक है वो भी एक ही बात कर रहा है कि आज भारत और पाकिस्तान का यह मैच होगा, किस प्रकार, कौन जीतेगा, एक ही चर्चा का विषय है। क्योंकि क्रिकेट का खेल, भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है ना, ये मुकाबला सभी दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का बाप कहा जाता है। तो पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इमरान खान पवेलियन की तरफ से और गावस्कर को वो गेंद करेंगे। जो फील्डिंग की जमावट है वो इस प्रकार है, 3 स्लिप है, एक गली है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है या ऑफ साइड की फील्ड और ऑन साइड में एक मिड ऑन मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। 6 फील्डर्स ऑफ साइड में, 3 फील्डर्स ऑन साइड में। इमरान तैयार पवेलियन की तरफ से गेंद कर रहे हैं गावस्कर को, ओवर पिच्ड ऑफ स्टंपर और गावस्कर आ गया है, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चैनल के लिए।
0: गजब गजब गजब से इतना शानदार है कि मेरा मन एकदम झूम उठा। जो सुनने वाले हैं वो भी ताली बजा रहे होंगे और मैं ये पूरा जो आपने ये जो समा बांधा, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतना शानदार दौर याद दिला दिया।
1: बहुत धन्यवाद। और रेडियो के श्रोताओं से बात करके तो मैं हमेशा भावुक रहता हूं, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत हुई है, मेरी पहचान भी यहीं से स्थापित हुई और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया।
0: जी, अभी तो और बातें करेंगे, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, रॉकी फिल्म का गाना सुनते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम।

0: सुशील जी, कमेंट्री का पूरा एक दौर देखा आपने और बहुत अलग अलग तरह के कमेंटेटर्स को सुना, हिंदी के और अंग्रेजी के। आपके बहुत फेवरेट कमेंटेटर्स कौन से रहे हैं?
1: नहीं, देखिए, मैं जॉन अर्नॉट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि वो एक कवि भी थे
0: जी,
1: तो उनका क्रिकेटिंग नॉलेज उतना नहीं था लेकिन उनकी भाषा अद्भुत रहती थी। तो एक ही बात मैंने उनसे सीखी कि कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करो। जो कहते हैं ना शब्दों की किफायत, जैसे अंग्रेजी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं, तो जब आप इस तरह की किफायत वापरते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है। सही शब्द सही जगह, तो असरदार शब्द, तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी। और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था 1979 में, जब इंग्लैंड गया तो उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा हर शब्द का एक चित्र होता है।
0: वाह,
1: जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव्स थ्रू द कवर टू फोर रन, तो इसका मतलब कि उसने हल्के से खेला। और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू द कवर फोर रन, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है।
0: क्या प्यारी
1: तो
0: बात।
1: ये शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी
0: जी।
1: और

0: अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूं, कई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है, अच्छे इंसान होने का यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये अन्यथा उम्र आपको मार देगी। लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको।
1: क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या रहा है?
0: नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं, और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है, देखिए लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है। ये तमाम चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, और वो जिम्मेदारियां भी उसकी है। अगर पिता ने उसके प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हो
1: जी।
0: और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें, तो फिर जीवन असफल हो जाता है, लोग आपकी गणना या आपका अंकन ठीक से नहीं करते। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुतेरी भूमिका, तो मैं अब जैसे शोरूम है हमारा इंदौर में, 150 आदमी काम करते हैं
1: जी जी,
0: जहां एक 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे, और आज 4 शोरूम्स हैं हमारे, कुल मिलाकर 150 आदमी काम करते हैं यहां से वहां तक, और बेदाग, यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। यहां एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी?
0: नहीं, दो बातें मैं जरूर यहां कहना चाहता हूं। एक तो ऑस्ट्रेलिया
1: जी
0: मैं गया था, सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में, और मैं भूलते नहीं कि वहां पर जो कीथ मिलर है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में, उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहां ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो थे ना, जवान लड़के लड़कियां आते थे कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुंह चला रहा, बहुत तेजी से मुंह चला रहा, ये बातें बड़ी फैल रही थी। और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के, कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय।
1: जी जी।
0: तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं, और मेरे तो होश उड़ गए, तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था, तो उम्र में 29 साल का था, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड of whatever you said, but whatever went into my ears was very sweet.
1: Wow, wow.
0: ये जो मैं समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कॉमेंट था कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा, वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिश्री जैसी आवाज आ रही। और एक और कॉमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी, इंदौर के मुश्ताक अली साहब और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, 1936 में ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया
1: जी,
0: पहले भारतीय। तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में, ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट लेकर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए, और सुशील दोषी तुमको भेजा हिंदी की कॉमेंट्री करने के लिए।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये बहुत बड़ा कॉमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कॉमेंट जो मुझे कहा आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे पहले भगाया था ना
1: जी जी,
0: उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज एक ईमानदार आवाज है,
1: अद्भुत।
0: तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाजें, मीठी आवाज, मोटी आवाज, बच्चन बैरिटोन, पतली आवाज है ना, सुरीली आवाज, लेकिन ये ईमानदार आवाज आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कॉमेंट मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं। तो ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं, تو یہ تمام چیزیں, اور ایک قصہ میں ضرور

0: सुनाना चाहता हूं
1: जी जी,
0: कि वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था हिंदी भाषा की।
1: जी जी जी,
0: फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे और शाम का वक्त था, तो मैंने, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है।
1: आहा, सुंदर,
0: इतना अच्छा लगा, अखबारों में भी छपा के इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है, जब आप साहित्य पढ़ते हो।
1: जी जी जी,
0: अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते।
1: और उस लेवल पर मैच को महसूस करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
0: सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करोगे तो महसूस कराओगे। ये जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे।
1: बिल्कुल सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे।

0: सुशील जी, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन से रहे आपके?
1: नहीं, मैं सुनील गावस्कर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है, तकनीक उनकी अद्भुत, ऐसी तकनीक मैंने किसी की नहीं देखी। बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं और ऐसे पिचेस पर

0: थकी हुई नहीं है
1: बिल्कुल,
0: और बाउंसर्स की कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी, और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बॉलर्स दुनिया में थे।
1: yes.
0: आप वेस्ट इंडीज में देखे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, यू नो कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो थॉम्पसन और लिली, इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे।
1: जी जी जी,
0: उन सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया का कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया, ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे,
1: जी जी,
0: वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को।
1: जी जी, और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं?
0: नहीं, विश्व क्रिकेट में जो एक तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन के बड़ा तो कोई रहा ही नहीं ऐसा, जैसा इयन चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे मुलाकात जरूर हुई
1: जी,
0: लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा
1: जी,
0: लेकिन उनके रिकॉर्ड से बता रहे। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर
1: जी,
0: बहुत बड़े बल्लेबाज वो भी अपने आप में। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना,
1: वाह वाह,
0: अगर किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर,
1: बिल्कुल,
0: कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे
1: जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त आप कहां थे और क्या?
0: नहीं, उस समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि किसी ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही नहीं टिकटें कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल के वक्त ही, उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे
1: जी।
0: तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे, तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई उस समय। क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है वो शास्त्रीय क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है
1: जी जी।
0: बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहने लगे, और T9 क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर दिया
1: जी। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है,
0: रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना सही, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है और परिस्थितियां ऐसी रहती है जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती है, इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं
1: जी। बिल्कुल, सुशील जी बहुत सारी किताबें आपकी हैं और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों दिखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं, ये जो लिखने वाला मामला है इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूं
1: जी,
0: मेरा पहला लेख 1966 में छपा था, कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा, और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें, और सबसे मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूं जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो
1: जी जी।
0: तो क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री कला के हिसाब से
1: जी
0: लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है, और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं।
1: वाह,
0: तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ते कम
1: जी,
0: फिर भी 65,000 कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं।
0: हाँ, करीब 5,000 से ज्यादा लेख और कॉलम्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है
1: जी।
0: ये कॉलम लिखना, उसमें पैसा तो कोई इतना रहता है नहीं, पैसा तो रहता है मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं
1: जी,
0: लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए, उससे पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तुर्रम खान समझें
1: जी,
0: और लोग आपको नहीं समझें तो क्या अर्थ है
1: जी।
0: तो ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया भी आप समझें
1: जी जी। आपका अपना एक डिसिप्लिन और आपकी अपनी एक फिटनेस भी एक एनवायरेबल है, उसके बारे में बताइए।
0: जीवन में देखिए उत्साह
1: जी,
0: और दूसरी बात, आप जब तक

0: क्रिएटिव हैं, यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में है तब तक आप जवान हैं। और रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीजों के प्रति प्रशंसा का वही भाव, और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है तब तक मैं अपने आप को काफी स्फूर्तिवान और काफी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीजें करता ही रहता हूं। अभी भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है, तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूं, जो योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो।
1: यहां गाना सुनते हैं हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।

0: आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दें, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी। एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन

0: सकता है और पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुंच सकता है। तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हो भाई लोगों, आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है, क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है।
1: जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहां थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी?
0: नहीं देखिए, 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेटी कर रहा था।
1: अच्छा,
0: मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है। तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं। वो उनको लगा कि कोई छापा तो नहीं पड़ रहा तो वो घबराया तो मुझे फोन किया। तो मैंने कहा मुझे बात कराइए। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली में था, मैं कमेंट्री कर रहा था
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने
1: जी।
0: और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया
1: जी,
0: भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर इतना प्यार कर रहा है तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता को। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वाकांक्षा थी
1: जी, जी, जी।
0: महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव
1: जी।
0: पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस। और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी
1: जी जी,
0: उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो उसको अब जीवन में और क्या चाहिए।
1: वाह,
0: देखिए माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बहते रहने का काम है
1: जी। आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए।
0: नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले द्वयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में
1: जी,
0: उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया
1: जी। सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की, आपकी आवाज इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कॉम्पिटिशन मुझे ही मिले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी, आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा।

यादों की महफिल, सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए

0: भीग जाएंगे। दो झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी

0: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत नामा,
0: किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम साहिब बहादुर, राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन की तर्ज।

0: आ रही हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे गोविंदर सिंह की आवाज फिल्म का नाम मौसम

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में, अमित खन्ना के बोल। राजेश रोशन की तर्ज है, फिल्म का नाम है देश

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की इबारत विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ी ही होगी। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पोस्ट नहीं देखी है उनके लिए इबारत यहां पेश है। इतने दिन कहां थे, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, ये कैसी बातें कर रहे हो, घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अरे खुलकर कहो ना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, ओफो कहना क्या चाहते हो, मुझको अभी चुप रहने दो, पहेलियां बुझाना छोड़ो ना, हम क्यों शिकवा करें झूठा, अरे किससे शिकवा हुआ है, क्या बात है, इंसान मोहब्बत कर बैठा पर ये तो अच्छी बात है ना, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, फिर वही, अरे खुलकर कहो ना, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें, देखो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह उलझी बातें कौन करता है, बातें हैं बातों का क्या, हाय इतना दुख मेरी तो आंख भर आई, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, अब तुम हद कर रहे हो, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, चुप रहो, अब ऐसी बहकी बहकी बातें की तो बातें बंद हो जाएंगी हमारी, समझे भाई, यही है आज की इबारत। और इस इबारत में बहुत सारे गाने बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने बाकायदा गानों को एक अच्छी तरीके से पहचान भी लिया है, लेकिन एक जो नहले पे दहला आया है उसे कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत लिखी है, क्या बात है बड़े छाए हुए आजकल, क्यों आपको पसंद नहीं है, हमें क्यों पसंद नहीं होगा, आखिर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, वही तो हमारे लिए आप श्रोतागण ही सब कुछ हो, बस इसी बात ने तो हमारा दिल छीना है। विविध भारती से एक संवाद, एक कमाल है भाई कमाल है, यानी नहले पे दहला मार दिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी श्रोताओं की बातें, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि यादों की महफिल में बहुत ही बढ़िया गाने आपने सुनवाए, इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जरा देखें कि हमारे और श्रोता क्या कह रहे हैं, कुछ श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे गानों की लिस्ट प्रदान कर दी है और यहां भेजा है। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो हम कहीं नहीं थे, विविध भारती के संग थे और ऐसे ही विविध भारती हमारे साथ चलती रही, गुनगुनाते रहे, दिल पर राज करते रहे, सुकून देते रहे। एक और श्रोता कहते हैं शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, हम विविध भारती सुनते रहे तो दिन खुशनुमा रहे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अप्रत्याशित थीम है और बहुत ही मजेदार गाने सुनाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि यादों की महफिल में गाने अच्छे सुनाई दिए थे। एक श्रोता ऐसे हैं जो बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप बालटाल में हैं और वहां से आगे रवाना हो रहे हैं, शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से। और वहां भी आप अगर विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला इस गाने के साथ। और आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या आम बोलचाल की भाषा में आप भी गानों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं।

योगेश का लिखा ये गाना मुकेश की आवाज सलील चौधरी की तर्ज आनंद फिल्म, और एक श्रोता ने ये कहा है कि ये गाना पूरी तरह से राजेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो पहला गाना आपने बजाया सुरीला सफर कार्यक्रम में वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पतिदेव इस गाने को बहुत अच्छे से गाते थे, पहला गाना यही था जो उन्होंने मुझे गाकर सुनाया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि योगेश जी क्या बात है, बेहतरीन आगाज इस कार्यक्रम का हुआ है और हम तो अपनी बातचीत में अक्सर ही फिल्मी गीतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि हम भी बातें करते हैं तो गानों का और फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो पूरे दिन कोई ना कोई गाना गाते रहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी गाने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा हमारे अस्तित्व का आईना है, व्याकरण की दृष्टि से भले शुद्ध ना हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में गाने तो आजकल मुहावरे की भूमिका अदा करते हैं, जैसे अगर कोई देर से आया तो हम कहते हैं बड़ी देर भाई नंदलाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं हम अभी इसी गाने को सोच रहे थे और ये गाना प्रसारित हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट शामिल नहीं होते, इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं, अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, आपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज है, कहीं दूर से गम आ जाए रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरीके से इबारत लिख दी है। अब जो गाना आ रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज्यादा करीब गाना है और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री, एक दूजे के लिए, ये फिल्म आपने किस साल में कहां किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं या अभी तक आप गर्मी से जूझ रहे हैं? शनिवार की दोपहर 1:12 क्या हाल आपके और आपके शहर के मौसम के?

शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहां तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुठाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली। सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही है कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है। भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण हैं। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारी श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए ये बड़ा ही अच्छा लगा था। 1981 में कॉलेज से भागकर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज से भागकर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी, कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था। और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है, फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। ये फिल्म कहाँ, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी बताइएगा।

0: एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भागकर देखी है ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब करें, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखती है कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है, रेशमा की आवाज सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे पर ये गाना किसका?

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। कमर जलाल आबादी ने ये गाना लिखा था, कुछ श्रोताओं ने गुलचन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर जलाल आबादी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सोई धागा। ओ हो सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलाल आबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता है जिन्होंने कहा 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज, अंखियों के झरोखों से, हम किसी से कम नहीं और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता है। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं उतनी बारिश हमारे यहां हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं, भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका। और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नजारा है और मैं अपने सफर पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि वो अपने सफर में भी विविध भारती को लगातार सुनते चले जा रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना, और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है तो मम्मी और पड़े

पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखाई है। इन सबके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफर करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चित्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए, लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराये फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है, तो एक और गाना आ रहा है और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय, अपनी बात कहिए।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है, ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंत की आवाज में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे ये जरूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक जमाना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं

0: एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफी पहले गतिविधियां शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती है, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था, स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सके। राष्ट्रगान के पश्चात मैं वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है। अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं। और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे, यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिर लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती है कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हेमंत कुमार की आवाज गंभीरता और मिठास लिए हुए है और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ये क्या हुआ,
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ।
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

0: एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और होता कुछ और है तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूं ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता है जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी कि कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो है ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए, ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज, बहू बेगम फिल्म का ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

भई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

परेशानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छीछी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो।

0: ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के जो कह दे वही होगा।
1: जम के एक जमा दूं

जी का जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच

0: लंबी अवधि का नाटक शहर में सपना, पहला भाग, 15 जनवरी 1995 के लिए।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

0: من چاہگی
1: من چاہگی
0: من چاہگی
1: लंबी अवधि का नाटक शहर में सपना पहला भाग 15 जनवरी 1995 के लिए।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: गांव कस्बे या नगर में रहने वाला कोई युवक जब एक उजले भविष्य का सपना देखता है तो अक्सर स्वयं को किसी महानगर में देखता है और अपने देश में जिस महानगर को लेकर सबसे अधिक सपने बुने जाते हैं वो है बंबई। बंबई सपनों का शहर है। सपने जो कभी सच भी हो जाते हैं मगर अधिकतर यथार्थ की चट्टान से टकराकर किरच किरच हो जाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही सपने की टूटन लेकर आए हैं नाटक के रूप में। ये नाटक है शहर में सपना। इसके लेखक हैं धीरेंद्र अस्थाना और निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। तो आइए सुने ये नाटक शहर में सपना।

0: सॉरी यार, काफी देर हो गई। मौसम का हाल देख रहे हो?
1: हाँ, बादल फट जाएंगे आज। मैं तो उम्मीद छोड़ बैठा था। शुक्र है फिर भी आए तो।
0: हाँ दोस्त बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। भाभी कहाँ है ऐसे मौसम में? यार चाय वाय पिलवाओ।
1: दीपा अपनी एक सहेली के साथ फिल्म देखने गई है।
0: ओ
1: तब मौसम इतना डरावना नहीं था।
0: लेकिन गुरु, ये हुआ क्या है कि मुझे बुलाने के लिए तुम्हें टेलीग्राम भेजना पड़ा?
1: मैं इस शहर की सूरत से डर गया हूँ देवेश।
0: क्या?
1: अब देखो, हम इस शहर में 3 साल से हैं और एक दूसरे से मिल पाए हैं सिर्फ 4 बार। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता?
0: लगता तो है भाई, लेकिन किया क्या जा सकता है। हालात आदमी के हाथ में कहाँ होते हैं। फिर ये शहर, इसका तेज और मशीनी जीवन, अब छोटे शहर जैसा सुख यहाँ कहाँ मिलेगा।
1: सुख? देवेश, क्या तुमने सुख को देखा है?
0: सुख को तो नहीं देखा, लेकिन सुख का सपना ही तो मुझे इस शहर में खींच कर लाया था।
1: सुख का सपना, सपनों का शहर, शहर में सपना। देवेश, मैं चाहता हूं कि आज हम अपने उस शहर की याद में रोएं, जिसमें आदमी के मामूली से सपनों को तो कम से कम न तोड़ा जाता हो।
0: ऐसा कोई शहर नहीं है भाई। बाय द वे, तुमने आज मुझे यहां रोने के लिए बुलवाया है?
1: नहीं नहीं, तुम क्यों रोओगे? रोना तो मेरे हिस्से में आया है। असल में मैंने कई साल के बाद एक नई कहानी लिखी है।
0: ओ, कहानी?
1: तुम्हें तो पता ही है कि मेरी हर कहानी के पहले श्रोता तुम ही होते हो।
0: ओके ओके, लेकिन तुम अभी तक क्रिएटिव बने हुए हो, अर्थात ये

0: शहर तुम्हारी क्रिएटिविटी को छीन नहीं पाया, इसका मतलब ये हुआ कि शहर हार गया?
1: शहर कभी नहीं हारा करता दोस्त, हारते तो शहरवासी ही हैं।
0: ठीक है, अब चाय तो मेरे ख्याल है भाभी के आने के बाद ही मिलेगी ना। अच्छा रुको, मैं बिस्तर पर आराम से बैठकर ये चादर ओढ़ लेता हूँ, कुछ ठंड सी लग रही है। हाँ तो शुरू करो अपनी कहानी, मैं मूड में आ गया हूँ सुनने के।
1: क्या शुरू करूं, 40 महीनों में हारी हुई जिंदगी या 40 महीनों से सहेज कर रखे छोटे छोटे सपने, क्या शुरू करूं?

0: हेलो राजेश,
1: ओ शेखर,
0: कैसे हो? अरे ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना, क्या हुआ नौकरी का?
1: बेकार यार, सब कुछ बेकार, सारा संघर्ष फिजूल, एक और आस धूमिल।
0: पर हुआ क्या?
1: शॉर्ट हैंड के एग्जाम में पास था, मगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट न होने के कारण अपमानित सा लौट आया।
0: एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या मां के पेट में पड़ता है? जब नौकरी होगी तभी एक्सपीरियंस आएगा ना।
1: और क्या, ये नाटकबाजी की क्या जरूरत है? वैकेंसी के विज्ञापन के साथ ही ये नोट भी छाप देना चाहिए ना कि सिर्फ सोर्स वाले लोग ही अप्लाई करें।
0: रिलैक्स यार, रिलैक्स। किशान, दो चाय भेजना बेटा।
1: मैं तो थकने लगा, सोचता हूं बंबई जाकर ट्राई करूं। सुना है बंबई किसी को निराश नहीं करती।
0: इतना बड़ा फैसला मत करो दोस्त। इस मुल्क में तुम जहां कहीं भी जाओगे, सपनों को धज्जी धज्जी होते ही देखोगे। यहां सपनों की लाश तो दिखाई देती है, बंबई के जन समुद्र में उसका कतरा भी नहीं दिखेगा। याद है, कोशिश करो, कोशिश करो।
1: हाँ, मुझे याद है वो कविता, कोशिश करो कोशिश करो जमीन में गड़कर भी जिंदा रहने की।
0: अच्छा एक बात बताओ, कुछ लिखा लिखाया भी है इस बीच की नहीं?
1: जिया है।
0: तो कोई बड़ा काम नहीं किया है, बेहिसाब लोग जी रहे हैं।
1: कैसा है ये अपना शहर, न ढंग की जिंदगी, न ढंग का साहित्य, न ढंग की नौकरी, न ढंग के सपने, कुछ भी तो नहीं दे सकता। इस शहर से जाना ही होगा।
0: बात शहर की नहीं, सिस्टम की है।
1: और सिस्टम हम बदल नहीं सकते।
0: बिल्कुल, मगर हमारे हाथ में कलम है, हम अपने लेखन से परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज तो कर सकते हैं।
1: फिर वही जनवाद, फिर वही साहित्य। जिंदगी आज बिगड़ रही है और तुम इसे 100 बरस बाद ठीक करने की वकालत कर रहे हो, और वो भी कलम से। भाड़ में गया तुम्हारा साहित्य।
0: राजेश एक बात ध्यान से सुनो, तुम जानते हो हमारी जिंदगी इतनी बेढंगी और बेमानी क्यों हो गई?
1: क्यों?
0: इसी साहित्य के कारण। हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे सामने अपने जीवन को सुखी बनाते रहे और हम उन्हें हमेशा हिकारत की नजर से देखते रहे। हम बौद्धिक थे, दूसरों से विशिष्ट। हमारे लिए 3 रातें जागकर एक कहानी लिख लेना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा पिताजी के ऊपर चढ़ता कर्ज का पहाड़ नहीं।
1: तुम कहना क्या चाहते हो?
0: मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हमारे गैर साहित्यिक दोस्त एमए, एमएससी और एमकॉम में फर्स्ट डिवीजन ला रहे थे, तब हम शहर में नुक्कड़ नाटक करते और कविता पोस्टर चुपकाते घूम रहे थे। क्यों? मैं पूछता हूं कि क्यों हमने अपनी जिंदगी को चौपट कर लिया? हमने कभी एक सुविधा संपन्न जिंदगी की ख्वाहिश नहीं की? हम हमेशा बेहतर और जीवंत साहित्य को लिखने में उलझे रहे।
1: हाँ, ये सब कुछ सही है, मगर इस पूरे हादसे का कोई अर्थ नहीं है।
0: अर्थ है, और बिल्कुल है। सोचो, जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम मिसफिट हो गए, आज वही चीज हमसे छूट रही है। जिस साहित्य को पाने की खातिर हमारी व्यक्तिगत जिंदगी एक दुस्वप्न में बदल गई, आज उसी साहित्य को गालियां देकर तुम खींच रहे हो।
1: मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं शेखर, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा था कि साहित्य और जीवन की तलखियों में कितना बड़ा फर्क है।
0: ठीक है राजेश, तुम जानते हो कि हमारी दोस्ती की नींव साहित्य पर ही रखी हुई है। यदि आज ये नींव ही खिसक रही है तो वास्तव में सब कुछ बेमानी है। तो कुछ नहीं, जीवन तुम्हारा है, यह तुम्हें ही तय करना है कि इस जीवन से तुम्हें क्या चाहिए।
1: ओके ओके बाबा, मैं तय कर चुका हूं, चलो चले। मैं अपने सपनों को, अपने जीवन को नष्ट होता नहीं देख सकता।
0: ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। अपनी खबर देना।

0: हुआ? पता है मैं आटा गूंद रही थी, निक्की आई और बोली भैया ने तुरंत बुलाया, देखो ना उंगलियों में आटा भी चिपका है। क्या हुआ जल्दी बोलो ना। ये हाथ में अटैची कैसी?
1: मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ, ये शहर कुछ नहीं दे सका आखिरकार।
0: अरे इतनी अचानक कहाँ जाओगे?
1: यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई।
0: बम्बई? इतनी दूर? हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है जहाँ पूरा दिन किसी दुर्घटना की प्रतीक्षा में गुजरता है और पूरी रात डर डर कर। राजेश, क्या हर प्रेम में ऐसे ही हादसे होते हैं?
1: ये बहस का नहीं, फैसले का वक्त है।
0: लेकिन हुआ क्या है? क्या डैडी से फिर झगड़ा हुआ है?
1: हाँ, वो अब मेरा बोझ नहीं उठा सकते, उन्हें निक्की की शादी के लिए भी पैसा जोड़ना है।
0: लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो ना?
1: दीपा, डैडी को कोशिश नहीं चाहिए, नतीजा चाहिए, नतीजा। और नतीजा इस शहर में नहीं मिलेगा। चलो यहाँ से चलें।
0: चले मतलब? क्या मुझे भी चलना होगा?
1: क्यों, तुम नहीं चलोगी? मैं अकेला ही जाऊं? तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी किस्मत मेरे साथ बांध ली है।
0: हाँ, कब चलना है?
1: अभी 9 बजे की बस से दिल्ली, वहां से शाम की ट्रेन से बम्बई।
0: अभी बिना किसी को बताए, आटा लगी उंगलियों के साथ, बिना कपड़े लते के? राजेश, ये कैसा प्रेम है हमारा? प्रेम तो सैकड़ों लड़कियां करती हैं, क्या सभी के साथ ऐसी अनहोनी पेश आती है?
1: 8:30 बज रहे हैं, तुम्हें 5 मिनट में फैसला करना है।
0: लेकिन इतने बड़े महानगर में अनजानों के बीच, बिना किसी नौकरी, बिना किसी ठिकाने के।
1: मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
0: ठीक है, जीवन को यही मंजूर है तो यही सही। चलो।
1: दीपा, क्या तुम सचमुच मेरे साथ चल रही हो?
0: तो फिर तुम्हारे बिना इस शहर में रहकर मैं जीऊंगी कैसी? राजेश, मैं तुम्हारे बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती।
1: थैंक यू दीपा, तुमने मुझे ताकत दी है। मैं तो आज हर तरफ से निराश होकर घर से निकला था। मैंने सोचा था तुम साथ चलने से मना कर दोगी और मैं तुम्हारे प्यार को झूठा ठहरा कर अकेला निकल जाऊं। मैंने सोचा था कि दूसरी प्रेम कहानियों की तरह हमारी प्रेम कहानी का भी दुखांत हो जाएगा, लेकिन तुमने प्रेम को जिला दिया। दीपा, रुको, मैं टिकट लेकर आता हूं।
0: सुनो, क्या ऐसे ही चलोगे?
1: मतलब?
0: किसी मंदिर में चलकर शादी तो कर ले।
1: शादी अब बंबई में ही करेंगे।
0: वहां रहेंगे कहां?
1: रास्ते में बताता हूं ना, अपना दोस्त है वहां। अरे टिकट ले आऊं वरना बस छूट जाएगी।
0: देखा दीपा, कहानी, फिल्म और नाटक सभी कुछ जिंदगी से कितना पीछे है। दो धड़कते हुए जवान दिलों के बीच कितनी दहशत, कितना अनिश्चय और कितना सन्नाटा है।

0: با ادب با ملاحظه होशियार तो दो तो दो। लीजिए मेम साहब, संभालिए अपने गृहस्थी का सामान और अब अपने स्टोव पर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाइए।
1: श्योर माय लॉर्ड, वन मिनट। आज पहली बार पता चला कि अपना घर क्या होता है। तुम्हारे दोस्त के घर रहते रहते मैं दुखी हो गई थी।
0: लेकिन ये मत भूलो कि अगर इस शहर में देवेश जैसा दोस्त न होता तो मैं यहाँ कदम रखने की सोच भी नहीं सकता था।
1: सो तो है,
0: ये कमरा भी देवेश के ही कारण है, वरना तो बंबई में बिना डिपॉजिट और बिना दलाली के खोली भी नहीं मिलती।
1: हाँ वो तो ठीक है, मगर हम दोनों के लिए पर्याप्त है। जैसा भी है अपना तो है ना।
0: हाँ मुझे भी आज ऐसा ही लग रहा है कि अब बंबई हमें अपने दामन में जगह दे देगी। कहते हैं कि यहाँ खोली नहीं मिलती, भले ही यहाँ नौकरी भी मिल जाए और छोकरी भी।
1: हाँ खबरदार, अगर छोकरी ओकरी की बात की तो। हाँ
0: अरे सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि छोकरी को तो मैं पहले ही भगा लाया हूँ। बहुत थकान हो गई यार, मैं जरा कमर सीधी कर लेता हूँ।
1: अरे अरे चटाई तो बिछा लो, नंगी जमीन पर पीठ दुखेगी।
0: धीरे धीरे संबंध बन रहे हैं लोगों से, छिटपुट काम भी मिलने लगा है, उम्मीद है महीने भर में नौकरी भी मिली जाएगी। देवेश लगा हुआ है, अरे मेहनत ही तो करनी पड़ेगी ना।
1: चलो उठो, लो चाय पी लो। अच्छा तुम्हारी कहानी का क्या हुआ?
0: आगामी अतीत पत्रिका को दी है, छाप रहे हैं, पैसा भी अच्छा है वहां, एक कहानी का 500 रुपए। अरे हाँ तुम्हें सरप्राइज देना तो भूल ही गया।
1: क्या?
0: देखो ये चूड़ियां लाया हूं तुम्हारे लिए, लाल चूड़ियां गोरी कलाई पर खूब फबेंगी। ला ला, हाथ इधर लाओ, मैं पहनाता हूं।
1: मेरा इतना ध्यान रहा तुम्हें, लेकिन लेकिन इतनी महंगी चूड़ियों की क्या जरूरत थी?
0: चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है। दीपा मैंने तुमसे तुम्हारा घर, माँ बाप, शहर, सभी कुछ तो छीन लिया, अपने प्रेम के सिवा और क्या दे सकता हूँ
1: राजेश?
0: और फिर मैं ही तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? यहाँ कौन तुम्हारी माँ बैठी है?
1: मत याद दिलाओ माँ बाप की, 3 महीने हो गए, किसी ने खोज खबर तक नहीं ली। निक्की ने बताया नहीं होगा क्या उन लोगों को? सोचा होगा बला टली।
0: तुम बला नहीं बली हो जान, तुम ही हो जिसने मुझ में भी बल भरा है।
1: नो मक्खन महंगा है।

0: अरे कितनी देर कर दी, कैसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे।
1: एक गिलास पानी।
0: लेकिन तुम रह कहाँ गए थे? मालूम है रात के 12 बज रहे हैं।
1: तुम्हें कैसे मालूम, घर में घड़ी तो है नहीं।
0: कैसी बातें कर रहे हो, बगल वालों से पूछा था 15 मिनट पहले, तब 12:15 बजे थे।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, पानी तो दो।
0: पानी क्यों, भूख मर जाएगी। तुम मुंह हाथ धोकर सीधा खाना ही खा लो ना, तुम्हारा मनपसंद गोभी पुलाव बनाया है मैंने।
1: तुमने खा लिया?
0: क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हें खिलाए बिना मैं खाती हूँ कभी?
1: मैं पगला गया हूं दीपा, समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। कभी कभी सोचता हूं कि अपना शहर छोड़कर गलती तो नहीं की।
0: क्यों भला?
1: इस बंबई में जीने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, जल्दी नौकरी नहीं मिली तो मैं।
0: परेशान मत हो राजेश, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। थके हुए हो ना, खाना खाके थोड़ा आराम कर लो। अरे हाँ, तुम्हारी एक चिट्ठी आई है, ये लो। लो खाना खा लो। किसकी चिट्ठी है?
1: एक प्राइवेट फर्म में स्टेनोकम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया था,
0: हाँ हाँ
1: उसी का इंटरव्यू लेटर है।
0: देखा, मैं कहती थी ना, हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत बस होने ही वाली है।
1: शायद हाँ शायद नहीं।
0: हिम्मत मत छोड़ना राजी, प्लीज।
1: अब क्या छूटेगी हिम्मत, जाओ अपना भी खाना ले आओ, साथ साथ ही खाते हैं।
0: ये हुई ना बात, तुम कमजोर पड़ने लगते हो राजी, तो मेरे दिल में साए साए होने लगती है।
1: नौकरी होगी तो जिंदगी रूटीन में चलेगी, व्यवस्थित। कितनी जगह हैं इस शहर में देखने को, तुम्हें कहीं भी नहीं ले जा पाया। गेटवे ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क, जुहू चौपाटी, मड आइलैंड, गोराई बीच, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव। बहुत खूबसूरत है ये शहर दीपा, ये खूबसूरती हमारे जीवन में उतरेगी कभी।
0: जरूर उतरेगी, मेरा दिल कहता है राजी।
1: तुम्हारे दिल को सलाम।

0: आखिरकार तो औरत है ना। संघर्षों से शुरू होकर बदहाली पर खत्म होती जिंदगी से नाराज है दीपा, पागल है। जिंदगी अभी खत्म थोड़ी हुई है, अभी तो आरंभ हुआ है जिंदगी का, समझ जाएगी। धीरे धीरे समय खुद समझा देगा कि जिंदगी उत्तरों और समाधानों वाला गणित नहीं है जिसे थोड़ी सी मेहनत से हल कर लिया जाए। ये तो अच्छी बात है कि उसे अब नौकरी मिल गई है, वरना हो सकता था कि दीपा की बोरियत हदें लांग जाती। अब ज्यादा पैसे कमाने हैं तो नौकरी के साथ साथ ओवरटाइम भी तो करना ही होगा ना। देख रहा हूं कि बात बात पर चिल्लाने लगी है दीपा। क्यों भला? ये वो दीपा तो नहीं है जो बिना कुछ सोचे समझे मेरे साथ बंबई चली आई थी। ठीक है कि मैं रोज सुबह 7 बजे निकलकर रात 12 बजे लौटता हूं और उसके हिस्से में आता है एक भाएं भाएं करता अकेलापन, लेकिन अगर ओवरटाइम न करूं तो 1500 की सूखी तनख्वाह में गुजारा चलेगा क्या? 500 रुपए तो कमरे का भाड़ा ही है।
1: ओए बिड़ो, नींद में चल रहा है या पेला है? देख के चलने का क्या?
0: नींद नींद है कहां जीवन में। अभी तो घर जाकर खाना खाने के बाद जय प्रभात प्रकाशन की किताब के प्रूफ्स भी पढ़ने हैं।

0: हाथ तेरे की। दीपा, ओ दीपा, तुम करती क्या हो दिन भर? कमीज के दो दो बटन टूटे हुए हैं।
1: हाँ हाँ अभी टाके देती हूँ, एक मिनट रुको, जरा टिफिन तैयार कर दूँ।
0: हरिया प्लीज दीपा, 5 मिनट लेट होने पर भी हाफ डे कट जाएगा।
1: हाँ हाँ लो, हो गया।
0: वो रात जो प्रूफ्स पड़े थे ना, उन्हें बैग में डाल दो, तो वापसी में देता भी आऊंगा ना।
1: अच्छा सुनो, आज कितने बजे लौटोगे?
0: रोज के वक्त पर, क्यों?
1: मैं आज शाम तुम्हारे दफ्तर चली आऊं क्या?
0: दफ्तर?
1: हाँ, सुना है कि शाम को मैरिन ड्राइव पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। हम बस घूमेंगे, हाँ कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ी।
0: पर मुझे तो रात 10:30 बजे तक ओवर टाइम पर बैठना पड़ेगा।
1: और इतवार को?
0: इतवार को भी तो ओवर टाइम होता है ना।
1: रोज रोज की बात थोड़ी ही है, कभी कभी किसी इतवार को तो साथ रहना चाहिए ना।
0: डार्लिंग, अव्वल तो यही संभव नहीं है कि दफ्तर ओवर टाइम पर बुलाए और मैं इनकार कर दूं। लेकिन अगर किसी जबरदस्त बहाने से इतवार को छुट्टी ले भी ली जाए, तो इतवार के 12 घंटे का ओटी छोड़ देने का मतलब है 75 रुपए का कैश नुकसान, और 75 रुपए का दूध हमारे यहां 15 दिन चलता है कि नहीं?
1: हाँ
0: अच्छा मैं चलूं?
1: सुनो, इतवार की बात तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसा करो कि किसी दिन शाम का ओवरटाइम छोड़ दो। जो बीच देखने का बहुत मन है। हमारे मकान मालकिन की लड़की बता रही थी कि जू का सूर्यास्त बहुत अद्भुत होता है। सिर्फ दिखा लाओ ना, देखो वहां खरीदेंगे कुछ नहीं, सच।
0: यार ये प्रोग्राम रात को बनाया करो, अभी तुम्हारे चक्कर में मेरी 7:10 की लोकल ट्रेन निकल गई तो आधा दिन कट जाएगा मुफ्त में।
1: रात को?
0: ओके बाय, चलता हूं।
1: रात को तुम 12 बजे लौटते हो राजेश, थकान से टूटे हुए, जिंदगी से ऊबे हुए, चिड़चिड़ाए, परेशान और पस्त। थकान से पस्त तुम्हारी बेहोश नींद को क्या सुना सकती हूं मैं? महीने में 5-6 दिन तो तुम रात को भी घर नहीं लौटते। 2 वर्ष के इस लंबे असहनीय समय में मेरे पास उस पहली रात के सिवा और क्या है जिसे सोचकर मैं सुखी हो सकूं? अब बिना शादी के मनाई गई उस पहली रात के सहारे तमाम उम्र सुखी रहा जा सकता है क्या?

तुम तो मेरे कोको ही हरा नहीं कर सकी राजेश, कि मैं अपने बच्चे के सहारे ही जी लेती। तीसरे प्राणी की परवरिश की चिंता हर बार इस अनिवार्य चाहत को भी पराजित करती रही, मगर कब तक ऐसे बंजर उजाड़ और बेमकसद जीवन को जीते चले जाए हम? आखिर इसकी क्या दुख है अगर सुबह से शाम तक मुझे अकेले कमरे में ही गश्त लगानी थी तो अपना घर क्या बुरा था? अपने घर से बेहिचक भाग आने का फैसला किस लिए था? साथ के लिए ही तो ना, प्यार के लिए ही तो ना। नहीं राजेश, नहीं नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन, नहीं चाहिए।

0: 650? ये आपने किसकी तनख्वाह बनाई है अरोड़ा साहब?
1: आप ही की है।
0: मेरी पे 1500 रुपए है।
1: मुझे मालूम है भाई, 20 साल से अकाउंटेंट हूँ इस फर्म में, यू नो 20 साल से। मुझसे हिसाब बनाने में कभी गलती नहीं होती, तभी ना 20 साल से यहाँ टिका हुआ हूँ।
0: अरोड़ा जी प्लीज, ये भाषण सुनाने का वक्त नहीं है, कृपया हिसाब समझाइए।
1: इसमें समझाने का क्या है भाई? भाई 500 रुपए तुम्हारे घर भिजवाए थे एडवांस, 7 दिन का लॉस ऑफ पे 350, कितना हुआ?
0: 850।
1: बचे कितने?
0: 650।
1: मैंने कितने दिए?
0: 650।
1: अब भी हिसाब समझने का है क्या?
0: अरोड़ा जी, इसमें से 500 रुपए तो मकान का भाड़ा ही चला जाएगा, बीमारी की वजह से ओवरटाइम भी कम हुआ है, मैं तो मर ही जाऊंगा।
1: तो भाई ऐसा करो, अपना ओटी एडवांस मांग लो, इस बार 950 बने, एक इतवार के 8 घंटे और 6 दिनों के 24 घंटे, यानी कुल 32 घंटे इस बार कम हो गए, वरना 1150 बन जाती।
0: ओटी एडवांस मिल सकता है?
1: बॉस चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आज मूड में है, जाओ जाओ।
0: मैडम गीता, बॉस को बोलो राजेश वॉन्ट्स टू मीट हिम।
2: वाई?
0: वाई? तुम सेक्रेटरी हो, वही बनी रहो, अपने बॉस से मिलने का भी कारण बताना होगा।
2: सर, मिस्टर राजेश वॉन्ट्स टू मीट यू अर्जेंटली, जाइए।
3: हेलो राजेश, हाउ आर यू यंग मैन?
0: सर, 3 दिन और 3 रातें लगातार काम करने के कारण जब मैं थककर बिस्तर पर पड़ा तो फिर 8वें रोज ही दफ्तर आ सका।
3: तो इसमें चिंता की क्या बात है? क्या मैनेजर ने कुछ कहा?
0: जी नहीं, मगर बीमारी की वजह से मैंने दवाइयों के लिए 500 रुपए एडवांस मंगवाए थे।
3: नहीं मिले? मेरी तो सख्त हिदायत है कि बीमारी में मेरे अप्रूवल के बिना भी एडवांस दे दिए जाए।
0: जी एडवांस तो मिला था।
3: फिर
0: एडवांस और 7 दिन की पे काट ली गई है सर, मैंने तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था।
3: ओहो, नियम तो नियम है यंग मैन, वो तो सब पर समान रूप से लागू होता है, ये कोई नई बात भी नहीं है। देखो, जो भी छुट्टी लेता है उसकी पे तो कटती ही है।
0: जी, मगर पूरे महीने में खाऊंगा क्या सर?
3: ये सोचने वाली बात है। ऐसा करो, तुम अरोड़ा से 1000 रुपए एडवांस ले लो, मैं बोल देता हूं उसे, और ये पैसा तुम अपने ओटी से 100 रुपए महीने के हिसाब से कटवाते रहना। ओके,
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: इट्स ऑल राइट। अरे सुनो भाई, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, दुख दर्द में काम नहीं आएंगे तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे? रिलैक्स एंड गो। ओके
0: ओके सर।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।